हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

देव देव कलयामी स्वाति तिरुनालर रचने माया माळवगौळर रूपक ताळदल्लिदे। देव देव कलयामी सेट्टु माया माळवगौळर रूपक ताळ रिटन बै स्वाति तिरुनाळ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग नट भैरव में बांसुरी वादन. कलाकार देव कुमार डे आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संजीव रॉय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव में बांसुरी वादन. कलाकार देव कुमार डे.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen to a flute recital in Rag Nat Bhairab. Our artist this morning, Deb Kumar De. Accompanying on the tabla, Sanjeev Roy. Now, listen to a flute recital in Rag Nat Bhairab. Our artist this morning, Deb Kumar De.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में बांसुरी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देव कुमार डे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संजीव रॉय। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गुनकेली में ख्याल गायन। आज के कलाकार हैं जयंत पांडे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार। तो आइए सुनते हैं राग गुनकेली में ख्याल गायन, कलाकार जयंत पांडे।
1: You were listening to a flute recital in Rag Nat Bhairab. Our artist was Dev Kumar De, accompanying on the tabla Sanjeev Roy. This is Ragam, 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, now listen to a khayal in Rag Gun Keli. Our next artist, Jayanta Pandey, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. Now, listen to a khayal in Raag Gunkeli by your artist Jayanta Pandey.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुनकेली में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे जयंत पांडे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशी सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a khayal in Raag Gunkeli by our artist Jayanta Pandey, accompanying on the tabla Devashish Sarkar. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आपका स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है पंडित विनायक राव पटवर्धन। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग ललत पंचम। सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है मुरलिया गोपाल, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है साथो यह जग भ्रम। सात संगत सारंगी मधुकर खाड़िलकर और तबला चंद्रकांत कामत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित विनायक राव पटवर्धन द्वारा प्रस्तुत राग ललत पंचम। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं तबला वादन। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं विनायक फाटक द्वारा प्रस्तुत तबले पर ताल मत्त ताल। आपके साथ हारमोनियम पर है प्रसन्न राजवाड़े और वायलिन पर है सुरेश गुजर। तो आइए सुनते हैं तबले पर ताल मत्त ताल, लाकर विनायक फाटक।

धा धिंता कत्ती टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक ट

धागे तीटा तीटा तागे तीटा तीटा क्रधा तीटा तीटा धागे न धा कत्रिकड़ धागे तीट गंद्रान त्रिकड़ थुन थुन थुन ना ना ना देने देने गंद्रिकड़ धा ता ता धा गंद्रान धागे त्रिकड़ थुन थुन थुन ना ना ना देने देने गंद्रिकड़ धा ता ता धा गंद्रान धागे त्रिकड़ थुन थुन थुन ना ना ना देने देने गंद्रिकड़ धा ता ता धा धा ता

धा धागे धीना गीना तीना तकित धकित धागे धीना धागे धीना धागे धीना गीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना धागे धीना

धा ता धा धात्र का धी किट का ता गदी गन धा तक धा धर गति किट का तक धा तक धा धर गति किट का तक धा तक धा धर गति किट का तक धा तक धा धर गति किट का

धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धगन धगतीना धग

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नटभैरव।

0: स्वरों में आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कसलीवाल। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। यू विल फर्स्ट लिसन टू राग नट भैरव, इन विच यू विल हियर आलाप, जोड़ एंड झाला, फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग इन विच यू विल हियर द आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगत की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन। कलाकार है विनय रामदासन। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मारुबिहाग, सुनते हैं विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है रसिया हो न जा, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मन भावन आयोरे। संगत तबला सचिन राजोपाध्ये, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग मारुबिहाग, कलाकार विनय रामदासन।

श्रोताओं, आपने सुना विनय रामदासन द्वारा प्रस्तुत राग मारू बिहा। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे, और अब सुन है विनय रामदासन द्वारा प्रस्तुत राग रागेश्री। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है गिनत रही तारे, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है लगन लागी तुम्हारे चरण की। साथ संगत तबला माधव मोड़क, हारमोनियम उमेश पुरोहित। तो आइए सुनते हैं राग रागेश्री, कलाकार विनय रामदासन।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे विनय रामदासन द्वारा प्रस्तुत राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे माधव मोड़क और हारमोनियम पर थे उमेश पुरोहित। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं खमाज और माज खमाज ठुमरी और पीलू दादरा. आज के कलाकार हैं सांता कुंडू. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं चित्तरंजन दलोई. शांता कुंडू अपने गायन का आरंभ एक खमास ठुमरी से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं ये खमास ठुमरी. कलाकार शांता कुंडू.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This evening, we first present a Hindustani vocal rendition. Listen to Thumri and Dadra in Raag Khamaj, Maach Khamaj and Pilu by our artist this evening, Santa Kundu, accompanying on the tabla, Devashish Sarkar and on the harmonium, Chittaranjan Dalui. Now, listen to Thumri and Dadra in Raag Khamaj, Maach Khamaj and Pilu by our artist Santa Kundu.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये खमास ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थे शांता कुंडू। शांता कुंडू अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं माझ खमास ठुमरी। तो आइए सुनते हैं ये माझ खमास ठुमरी।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये माज खमाज ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थे शांताकुंडू। शांताकुंडू अपने गायन के समापन अंश में प्रस्तुत करने जा रहे हैं पीलू दादरा। तो आइए सुनते हैं ये पीलू दादरा, कलाकार शांताकुंडू।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये पीलू दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे शांता कुंडू। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे चित्तरंजन दोलुई। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्री में सितार वादन। आज के कलाकार हैं शिवशंकर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थो मल्लिक। तो लीजिए प्रस्तुत है राग रागेश्री में सितार वादन, कलाकार शिवशंकर मुखोपाध्याय।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी एंड दादरा इन राग खमाज, माच खमाज एंड पिलू बाय आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग शांता कुंडू, एकम्पानिंग ऑन द तबला देवाशीष सरकार एंड ऑन द हारमोनियम चित्तरंजन दलुई। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट नाउ लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन राग रागेश्री। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग शिवशंकर मुखर्जी, accompanying on the tabla Partha Mallik. Now listen to a sitar recital in rag Rageshri by your artist Shivshankar Mukherjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्वरी में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे शिवशंकर मुखोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पार्थो मल्लिक। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a sitar recital in Rag Rageshri by our artist Shiv Shankar Mukherjee, accompanying on the tabla Partha Mallik. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी. लमित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं लाल मनाए, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं अल्लाह जाने अल्लाह जाने. तबले पर आपकी संगति है नवाब अली खाने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a vocal recital by Shri Rajendra Singh. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. Shri Rajendra Singh first presents Rag Todi, in which he sings the Vilambit Khayal set to Ektal. The lyrics are Lal Manaye. This will be followed by a composition in Drut Khayal set to Teen Tal. The lyrics of this composition are Allah Jane, Allah Jane.

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। और लीज सुनिए राजेंद्र सिंह का गाया राग अलैया बिलावल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं दैया कहाँ गए वो लोग। और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं लाडली लाल फूले आवत। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: दैट वॉज राग तोड़ी। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, श्री राजेंद्र सिंह नाउ प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल, इन विच ही सिंग्स फर्स्ट अ ख्याल सेट टू विलंबित एकताल। द लिरिक्स आर दैया कहाँ गए वो लोग। दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू द्रुत तीन ताल। द लिरिक्स आर लाडली लाल फूल आवत।

0: अभी आप राजेंद्र सिंह का गाया राग अलहैया बिलावल सुन रहे थे। तबले पर किसने गति की थी नवाब अली खान ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग अलहैया बिलावल वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम विच फीचर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्री राजेंद्र सिंह। He was accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami. This was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हर पल हर दिन भारतीय संगीत, यह है रागम DTH चैनल। प्रस्तुत है भक्ति संगीत, और आइए आप सुने एक भजन वाणी जयराम की आवाज में, मेरे तो गिरधर गोपाल।